कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जबुद करख करा करतारा प्रजा धर तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मृत दे तर सब हूँ।

चीन तन पिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो चेती तुमरा लखाना जाय पसारा केवद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अवरच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तुज तब सरणी।

कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ

0: दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, न दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

दोस्त बिछड़े हैं कई बार मगर ये नया दाग खिला है अब के। वो तो फिर गैर थे लेकिन यारो, वो तो फिर गैर थे लेकिन यारो, काम अपनों से पड़ा है अब के। मैं ख्याल हूँ, रईस खान को सुनते हैं, आइए।

आज तुझे क्यों चुप सी लगी है, आज तुझे क्यों चुप सी लगी है, कुछ तो बता क्या बात हुई है। आज तुझे से सारी दुनिया हम दोनों को देख रही है। खैर, तुझे तो जाना ही था, जान भी तेरे साथ चली है। आबिदा परवीन को सुनिए, हम तो हैं परदेश में।

आबिदा परवीन को आप सुन रहे थे ईस्ट एफएम की अंजुमन में। हमको किसके गम ने मारा, अब बारी आती है गुलाम अली की। तेरी निगाह के जादू बिखरते जाते हैं, तेरी निगाह के जादू बिखरते जाते हैं। जो जख्म दिल को मिले थे वो भरते जाते हैं। तेरे बगैर वो दिन भी गुजर गए आखिर, तेरे बगैर ये दिन भी गुजरते जाते हैं। तमाम उम्र जहां हंसते खेलते गुजरी, तमाम उम्र जहां हंसते खेलते गुजरी, अब उस गली में भी हम डरते डरते जाते हैं।

ईस्ट एफएम पर आप सुन रहे हैं अंजुमन। दिन का एक बजा है। आज आप आध घंटे के लिए सुनेंगे सरूरे इश्क सायरा खान की आवाज में। दिल में और तो क्या रखा है, दिल में और तो क्या रखा है, तेरा दर्द छुपा रखा है। इतने दुखों की तेज हवा में दिल का दीप जला रखा है। धूप से चेहरों ने दुनिया में, धूप से चेहरों ने दुनिया में क्या अंधेर मचा रखा है।

एक यही आस है काफी मेरे जीने में, एक यही है आस काफी मेरे जीने में, दिल नहीं आप धड़कते हैं मेरे सीने में। अब इजाजत दीजिए, अलाउद्दीन कुरैशी की मुलाकात होगी अगले इतवार ईस्ट एफएम की अंजुमन में।